0: की गई कैपेसिटी केस कर फॉर
1: 252 copies, code 4 4860, cancel, confirming apartment 10.
0: Case situation.
1: You copy?